0: So direct your face toward the religion.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.

0: कंटेनर्स सेटको फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी। साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th। आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
2: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Touring to St. George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back in to the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
3: Radio partner, like

बढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: जिंदगी।
1: लिसन टू लाइक अ गोल्ड 2 ऑन लाइक अ रेडियो मोबाइल ऐप लाइक अ रेडियो .com एंड Alexa प्ले लाइक अ गोल्ड 2। ये है लाइक अ गोल्ड।

0: sounding better than ever in the sunshine.
1: Like a radio.
2: सोने रंग धरती का गोटे रंग है लहरिया
3: वो दोनों को ही चाहतो न चाहतो से मारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा

0: ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: Laika Radio Network proud hospitality partner Ragasan
3: जी टीवी एच डी पर देखिए एक नई कहानी
4: हमारे पति हमको छोड़ दिए
3: गंगा जिसने अपने पति का साथ खो

0: ये चाय चाय चाय है।
1: वाशा वाशा 2026 एलजीबीटी सब कुछ चलता है आजकल.
0: मॉर्निंग डनी, टुडेज गाना इज एब्सोल्युटली क्लासिक एज यू सेड। इट गोज हाय हुक हाय हुक हाय हाय
1: हाय
0: हाय हुक हाय हुक हाय।
1: हाय हाय.
0: ये लड़की मेरे सामने, ये लड़की मेरे सामने, मेरा दिल लिए जाए।
1: इट्स आवर वेरी ओन पूर्णिमा देयर एज़ वेल.
2: ये लड़की मेरे सामने, आई हुक आई हुक आई हाय.
1: आई थिंक ही इज लुकिंग एट हिज डॉटर.
2: आई हुक आई हुक आई.
1: मेबी द वाइफ.
2: ये लड़की मेरे सामने, मेरा दिल लिए जाए
1: जाए जाए बाबा.

0: मेरे लिए और सबके लिए ये जीना और ये रोजाना सुबह का आना जाना और बैक टू बैक दो गाने, आज के दोनों गाने सोनू निगम के और तीसरे बैक टू बैक गाने में होगा अमरता और वाजिद के साथ।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: ये है लाइका रेडियो.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
3: साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
7: डोंट मिस मोनोज मार्केट्स, Europe's largest arena, Co-op Live, on Saturday the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, Nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482-511-603. Visit monosmarkets.com/tickets now.
8: On this week's Leica Extra podcast, Leica Radio Network presenters get candid about films, lifestyle and controversies.
9: You have to be really dedicated to be able to
10: become a
9: radio presenter. Yeah. So you're giving sacrifices around you as well.
10: True.
9: Whether it's at home or whether it's family.
8: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Punjabi Hit of the Hour with

0: emergency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: हाँ जी, करेंसी के रेट आपको बता दें सुबह ही सुबह. ताज़ा तरीन रेट US डॉलर 1.34, इंडियन रुपीज में 129.52, पाकिस्तानी रुपीज में 375.01, बांग्लादेशी टका 167.15, श्रीलंकन रुपीज 450.51 और अफगानी रुपीज 90.94.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is the LIKA Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: जी, साउथहॉल वालों का पैगाम इंडिया, माफी चाहता हूँ, दुबई जाने के लिए बेशुमार मराहत और बहुत सारे इन्होंने जो है आपके लिए ऑफर्स निकाली हैं और कहते हैं कि 5-star होटल में क्याम और ATOL से प्रोटेक्टेड है. नंबर इनका है 0208-574-8410.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is LIKA Radio News Update.
1: और अब मिड मॉर्निंग शो में उर्दू की खास खास हेडलाइंस. ईरान के कुवैत और बहरीन के में अमरीकी फौजी तंसीबात पर मजीद हमले. ईरान के खिलाफ ताजा फिजाई हमलों में एक और मरहलेवार मुकम्मल कर लिया, अमरीका ने कहा. हालिया ईरान जंग में 100 फौजी जख्मी हुए हैं, पेंटागन की तस्दीक. और ट्रंप ने कहा कि जल्द वजीर आजम, बरतानिया के वजीर आजम से मुलाकात करूंगा. तो ये थी उर्दू की चंद खास खास हेडलाइन. मजीद अपडेट जानने के लिए सुनते रहिए लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर.
0: द लेटेस्ट गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, योर डिजिटल ग्रोथ पार्टनर. दिस इज लाइका रेडियो.

0: और सोने का भाव हमारे यहाँ आज यूके में 1 ग्राम गोल्ड की कीमत हो गई 96 पाउंड 3 पेंस, जबकि पाकिस्तानी रुपीज में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आज 36,650 रूपए।
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartihanks.com।
2: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Laika Radio. सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
1: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Dizzy twist. Touring to St George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
2: Radio partner.

0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: जी हाँ जी, SBI वालों का पैगाम आज का रेट दे रहे हैं 128 रुपए 80 पैसे और इनका पैगाम ये होता है।

0: है कि इनकी किसी ब्रांच में जाएं, वहां से रकम पहुंचाएं इंडिया में अपने प्यारों को, या ऑनलाइन या फिर इनकी मोबाइल ऐप के जरिए योनो SBI मोबाइल ऐप UK के जरिए। जी हां, आज का रेट 128.80 रुपए।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. We are Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Greater Manchester. Leica Radio.
0: राइट जनाब, लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से प्रोग्राम बज़्मे ताबेश, जो कि होता है ऑफिशियल मिड मॉर्निंग शो। आज है मंगलवार, ट्यूसडे, हफ्ते का दूसरा काम के आगाज का दिन, और जुलाई महीने की हो गई आज 21 तारीख, 21 जुलाई 2026। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अपने दिन का, अपनी सुबह का आगाज कर चुके होंगे अपने अपने टूल्स, अपने अपने औजारों के साथ साथ। आज थोड़ी सी मुश्किल है, आज मेरा हेडफोन थोड़ा सा खराब है। उम्मीद करता हूँ मुझे जरा बताइएगा कि मेरी आवाज आप तक क्लियर क्रिस्टल आ रही है कि नहीं आ रही। मुझे फौरन जवाब दीजिएगा 07703403020 के नंबर पर। आज के दिन, आज के हवाले से हमारी डायरी के पन्ने पे दो नाम लिखे हैं, जरा थोड़ी सी देर में हम देखेंगे और आपको बताएंगे कि वो दो नाम क्या हैं। इसके अलावा बैक टू बैक गानों के साथ साथ पाकिस्तानी इंडियन सॉन्ग्स होते हैं, आपको पता है हमारे प्रोग्राम में, और एक अदद रिडल होता है। रिडल में हम आपसे पूछने वाले हैं आज की बड़ी ही आसान सी पहेली। जी हाँ, वो कौन सी चीज है जिसमें पढ़ना बड़ा आसान है मगर निकलना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, वो कौन सी चीज है जिसमें पढ़ना बहुत आसान होता है मगर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा अब आप मेरे साथ रहेंगे पूरे 1 बजे तक, मेरे दोपहर के लंच टाइम तक साथ निभाइएगा।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: कहाँ जी यशुमती मैया से, क्या बात है लता मंगेशकर और मन्नडी की आवाज का ये सॉन्ग और फिल्म का नाम था सितम सियम सुंदरम। और मुझे कहते हैं अपना ताबिश और आज के रिडल के जवाब आने शुरू हो गए। क्या मैंने इतनी आसान आज आपसे पहेली पूछी है? मैंने पूछा था कि वो कौन सी चीज है जिसमें पढ़ना आसान और निकलना बहुत मुश्किल होता है। जवाब आने शुरू हो गए हैं। 07703403020 हमारा नंबर है और साथ निभाने के लिए बेहद शुक्रिया। घर पे हैं, काम पे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और लंदन से लेके मैनचेस्टर और मैनचेस्टर से लेके ब्लैकबर्न तक और ब्लैकबर्न से लेके प्रेस्टन तक और फिर वापस कराची, कराची से लाहौर, लाहौर से लिस्बन यानी पुर्तगाल, उसके बाद नेदरलैंड और वापस ओल्डहम में।
1: दिस इज लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, होम ऑफ लंदन्स लाइका रेडियो एंड लाइका गोल्ड।

0: जी हाँ जी, प्रॉमिस बाय तोशी साबरी की आवाज, और इतनी मधुर आवाज के साथ इंसान बात करे, अपनी अच्छाइयों की बात करे इंसान।
1: Like a radio.
0: कुछ आदतों की और कुछ तकलीफात की, कुछ मुश्किलात की, और कुछ इंसान की ऐसी आदतें होती हैं जो इंसान की अपनी मजबूरी बन जाती हैं। कहते हैं कि बात मोहब्बत की नहीं आदत की थी, बात मोहब्बत की नहीं बात आदत की थी, मुझे उसकी आदत हो गई थी।
1: This is Like a Radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम, और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show Saregamapa is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
7: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
6: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
8: द वॉइस दैट डिफाइंड अ कंप्लीट एरा, the songs that touched millions. She's coming to London soon.
9: Hi, this is Akshay Kumar.
10: Hi, this is Akshay Kumar.
9: And you're listening to Like Our Radio.

0: is Leica Radio Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: राइट जनाब, करेंसी के ताज़ा तरीन रेट आज US डॉलर 1.34 इंडियन रुपीज में 129.52, पाकिस्तानी रुपीज में 375.01, बांग्लादेशी टका 167.15, श्रीलंकन रुपीज 450.51 और अफगानी रुपीज 90.94.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: और जी हाँ, हमारे यहाँ गोल्ड का रेट आज यूके में, हमारे यहाँ बरतानिया में 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 96.03 यानी 96.03 और पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आज है 36,650 रुपए।
0: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartyhanks.com. Leica Radio.
1: Right, जनाब, Leica Radio से लाइव रीड NHS वालों की तरफ से बहुत अहम पैगाम। ये पैगाम NHS की जानिब से पेंडल कम्युनिटी रेडियो के तमाम सामीन के लिए है। बचपन में लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बीमारियों से बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती है और इंग्लैंड में हर साल 5,000 से जायद बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं और इसमें ये बड़ी मददगार साबित होती है। बचपन की मुतअद्दिद संगीन बीमारी, अस्पताल में दाखिले और बाज़ोकात जिंदगी भर की माजूरी का सबब बन सकती है। खसरा और काली खांसी जैसी बीमारियां हमारी कम्युनिटी में बहुत तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे ने हिफाजती टीके नहीं लगवाए तो वो इन बीमारियों से यकीनी तौर पर महफूज नहीं है। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली बचपन की तमाम वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को लगाई जा चुकी हैं और रिकॉर्ड से वाजे है कि इन वैक्सीन से बचने बच्चे बहुत सी बीमारियों से बिल्कुल महफूज हो जाते हैं। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए जरूरी है कि वैक्सीन मुकर्रर वक्त पर लगवाई जाए। अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो जल्द अज जल्द अपने GP से राब्ता करें ताकि वो वैक्सीन मुकम्मल की जा सके। क्या आपके बच्चे की तमाम हिफाजती वैक्सीन्स बर वक्त मुकम्मल हैं? ये जानने के लिए अपने बच्चे की रेड बुक चेक करें या अपने GP से सर्जरी पे जाके राब्ता करें और मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccination।

0: ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
4: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London.

बात, मुझे लोग अक्सर प्यार से ताबी कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, लेकिन ये चीजें खत्म हो गई। बड़ी प्यारी सी बात हमें लिख के भेजी ब्रेक से पहले अतीक राजा ने, कहते हैं यार ताबिश भाई अर्ज किया है पूछेंगे जब अजीज तेरी खैरियत तो हम, पूछेंगे जब अजीज तेरी खैरियत तो हम, किस मुंह से कहेंगे कोई राबता नहीं। जी हाँ जी, हमारे आपके राबते का नंबर 07703403020 है, और आज का जो रिडल हमने आपसे पूछा है वो सिर्फ इतनी सी बात पूछी है कि वो कौन सी चीज है जिसमें पढ़ना आसान है और निकलना मुश्किल है। तो हमें जवाब आने शुरू हो गए हैं। मोइना जी ने हमें लीम से लिख के भेजा है ताबिश बुरी आदत, और कराची से फरीद हुसैन भाई ने कहा तजुर्बा, और उमर कहते हैं मैनचेस्टर से ताबिश भाई आई थिंक मुसीबत, और बरी से अमन कहते हैं कि मुश्किल। तो बहरहाल जी बताते रहिएगा, सुनते रहिएगा, और हमारे प्रोग्राम की आज की पहली फरमाइश है बरी से लैला ने अपने खास, और बस खास ही कर लिखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, एक खास दोस्त के लिए ये नगमा। तो नाम हुआ जी आपके दोस्त के लिए,

0: जी हाँ जी, बेवजह खामखा ख्वाब बुनता रहा। ख्वाब बुनते रहने चाहिए, ख्वाबों को रोकना नहीं चाहिए। ख्वाबों का सिलसिला भी आदतों का समर होता है। मैंने कहा था ना कुछ देर पहले, मैं आपसे कह रहा था कि बात मोहब्बत की नहीं आदत की थी, मुझे उसकी आदत हो गई थी। और बजा औकात और बाज दफा मोहब्बत से भी ज्यादा, मोहब्बत से भी ज्यादा जानलेवा साबित होती है ये आदतें। तो लिहाजा बहरहाल आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया, हमारे रिडल का जवाब आप दे रहे हैं। प्रोग्राम के आज के नगमात और हमारी बातें शायद आपको कुछ अच्छी कुछ अजीब लग रही होंगी। आज मैं बिना हेडफोन के प्रोग्राम कर रहा हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई, आते ही हमसे हमारा हेडफोन टूट गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि जब हम हेडफोन पहनते हैं तो हमें हमारी आवाज़ हमारे ही कानों में आ रही होती है, तो हम समझते हैं कि आप सुन रहे हैं, वरना इस वक्त ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ही कुछ कह रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ और कोई मुझे नहीं सुन रहा। एनीवे जी, शमशेद असलम ने हमें सुना है और मैसेज किया है। शमशेद, आपने हमें वॉइस ओवर भेजा है, कुछ देर में सुनेंगे आपकी आवाज़ के आपने क्या कहा है। पाकिस्तान में आप हमारा साथ निभाते हैं शमशेद असलम, थैंक यू वेरी मच। जमशेद चौधरी भाई स्टॉकपोर्ट में हमारे साथ हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और रिडल के जवाब में मजीद दो जवाब आए हैं। एजाज हैं, एजाज मैनचेस्टर से कहते हैं, आपके रिडल का जवाब ताबिश भाई, मेरा ख्याल है कि इंसान। और सैयद बुखारी ने लिख के भेजा कि हो सकता है ताबिश तुम्हारे रिडल का जवाब है इश्क।
1: We are the Leica Radio Network, now with three Asian radio stations in the UK. The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: Radio.
1: मैं और नाहिद अफर की आवाज का गीत आप सुन रहे थे, हमने खुद छेड़ दिया प्यार के अफसाने को। शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ हैं बरी में चंदा, बरी में अमन और निगत हमें सुनती हैं, पाकिस्तान गई हुई हैं आजाद कश्मीर। और सैयद बुखारी जी ने हमें लिख के भेजा आज के रिडल का जवाब, इश्क कमाल हो गया। जबकि गुलाम अली भाई ब्लैकबर्न से लिख के भेजते हैं, ताबिश भाई आई थिंक सो उलझन। अच्छा जी कोई बात नहीं, अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है हमारे दोस्त। और मलिका जी हमारे साथ हैं, मलिका बहुत शुक्रिया आपका साथ निभाने का। डॉक्टर अल्ताफ अलवी ने मैसेज किया, सबको सलाम कहा, वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। साजिदा सुमर हमारे साथ होती हैं रोजाना प्रेस्टन में, और प्रेस्टन ही में शकील भाई, वल्ली भाई और खुशबू हमारे साथ होती हैं। इमरान राणा वालेकुम सलाम, मजहर भाई हमारे साथ हैं लीड्स में, और अहमद हैं, अहमद ने गेटली से हमें मैसेज किया था, अहमद बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम सलाम। मोहम्मद अशरफ भाई होते हैं हमारे साथ आथरटन में, उमर हमारे साथ हैं, और जी हाँ लाहौर में अफशा हमारे साथ हैं, योगेश भाई हैं लंदन में, योगेश भाई नमस्ते कैसे हैं आप। रोजडेल में गजाला जी भी हमारी बहन है, और ये जो रिडल है आज की पहली ये हमें भेजी है गजाला जी ने। अब गजाला जी ने भेजी है तो बड़ी समझदार हैं और हमसे बड़ी हैं, लिहाजा देखिए अभी तक इस रिडल का जवाब मेरे पास भी सही नहीं पहुंचा है, तब होगा क्या, देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। बहरहाल जी साथ निभाते रहिए और सुनते रहिए लाइक रेडियो रेटर मैनचेस्टर से हमारा प्रोग्राम। और नेक्स्ट सॉन्ग भी एक फरमाइश है,

जी हाँ, वेलकम बैक। और प्रोग्राम के तीसरे अवर की पहली गजल, प्रोग्राम की पहली गजल होती है और आखिरी गजल होती है, जो मैं हमेशा आपके लिए प्ले करता हूँ। और आज की गजल इससे पहले किसी भी प्रोग्राम में प्ले नहीं की गई, लिहाजा इसे जरा गौर से सुनिएगा। बहुत ही सीधा सीधा अल्फाज हैं और बड़ी शफाफ और साफ उर्दू के अल्फाज पंकज उदास के।

0: ना अब मुस्कुराने को जी चाहता है। गजल सरा थे पंकज उदास और उम्मीद है कि आज की गजल गुज़िश्ता पूरे दो दिनों से जरा मुख्तलिफ लगी होगी आपको। कहते हैं कि मोहब्बत में ये खौफ क्यों मुसल्लत रहता है, मोहब्बत में ये खौफ क्यों मुसल्लत होता है कि कहीं मेरे सिवा कोई और, कि कहीं मेरे सिवा कोई और अजीज उसे तो नहीं। और कहते हैं कि खुद पसंदी के इश्क में पागल हैं हम, खुद पसंदी के इश्क में पागल हैं हम, हजार गुनाहगार सही मगर मुनाफिक नहीं हैं हम। बार फिर से प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में खुशामदी और उन तमाम साथियों का जो पुराने हैं और उन तमाम साथियों का जो नए हैं। पुरानों में हमारे जमशेद चौधरी भाई हैं और शमीम बानो बेगानी हैं, राहिम हमारे साथ हैं, पुरानों में फरीद भाई हैं और कजूरी जी हैं, अतीका जी हैं और राहिला जी हैं, बरी में पहलवान सज्जाद भाई हैं और अशरफ साहब हैं, उमर हैं, खालिद महमूद भाई हैं, नौशाद अली भाई हैं, गजाला जी भी हैं, वजाहत हमारे साथ हैं और नसीर भट्टी, जी हाँ मुझे पता है कि आप सुन रहे हैं, और काशिफ हमारे साथ होते हैं, काशिफ भाई आश्टन अंडरलाइन में वहीं पे होती हैं हमारे साथ, जरीन और जरीन के साथ साथ वहां पे होती हैं सीमा।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, जनाब करेंसी क्रेडिट एक बार फिर से आप तक पहुंचा दें। यूएस डॉलर 1.34, 1.34 इंडियन रुपीज में 129.52, पाकिस्तानी रुपीज में 375.01, बांग्लादेशी टका 167.15, श्रीलंकन रुपीज 450.51 और अफगानी रुपीज 90.94।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: हाँ जी, साउथ हॉल वालों का पैगाम आपको बता दें कि अब दुबई जाने के लिए साउथ हॉल वालों का पैगाम कहते हैं कि बेहतरीन रेट्स आपको देते हैं और तैयारी अगर आपने कर ली है तो जाने के लिए मुझे भी बता दीजिएगा, मेरा भी इरादा है दुबई जाने का। कहते हैं कि ATOL से प्रोटेक्टेड हैं और नंबर इनका है 02085748410।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, LIKA Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: Right, जनाब, हमारे इस हफ्ते की आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं सुनिधि चांद।

0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: राइट जनाब, गोल्ड का रेट एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है 96 पाउंड 3 पेंस और पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की आज कीमत है 36,650 रुपए 36,650 रुपीज।
0: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartihanks.com।
1: लाइक अ रेडियो। राइट जनाब, ब्लैक रेडियो से एक बार फिर से आपको एनएचएस वालों का पैगाम हम पढ़ के सुना दें। ये पैगाम एनएचएस की जानिब से पेंडल कम्युनिटी रेडियो के तमाम सामेन के लिए है। बचपन में लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन्स आपके बच्चों को बीमारियों से बेहतरीन तहफ्फुज फराहम करती हैं और इंग्लैंड में हर साल 5,000 से ज्यादा जाने बचाने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की मुतअद्दिद संगीन बीमारी, अस्पताल में दाखिले और बाज़ूक़ात जिंदगी भर की माजूरी का सबब बन सकती है। खसरा और काली खांसी जैसी बीमारियां हमारी कम्युनिटी में बहुत तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे ने हिफाजती टीके नहीं लगवाए तो वो इन बीमारियों से यकीनी तौर पर महफूज नहीं है। एनएचएस की जानिब से फराहम की जाने वाली बचपन की तमाम वैक्सीन्स दुनिया भर में लाखों बच्चों को लगाई जा चुकी हैं और रिकॉर्ड से वाजह है कि इस वैक्सीन से बच्चे बहुत सी बीमारियों से बिल्कुल महफूज हो जाते हैं। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए जरूरी है कि वैक्सीन मुकर्रर वक्त पर लगवाई जाए। अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो जल्द से जल्द अपने जीबी से राब्ता करें ताकि वो वैक्सीन मुकम्मल की जा सके। क्या आपके बच्चे की तमाम हिफाजती वैक्सीन्स बरवक्त मुकम्मल हैं? ये जानने के लिए अपने बच्चे के रिकॉर्ड रेड बुक चेक करें या अपनी जीपी सर्जरी से राब्ता करें और मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk चाइल्डहुड वैक्सीनेशन।
0: ये है लाइका रेडियो।
2: New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op Live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482 511603. Visit monosmarkets.com.

0: सबसे निराला
1: मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
2: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
5: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: मोहब्बत है और मैं हूँ तेरा परवाना। फिल्म का नाम था शम्मे मोहब्बत और ये गाना गा रहे थे असद अमानत अली, मेरे फेवरेट सिंगर, और फरीद भाई आपकी भी फेवरेट सिंगर। कहते हैं कि मेरे नहीं हो पर मेरे लगते हो, मेरे नहीं हो पर मेरे लगते हो, जो सच में होते, जो सच में होते तो कयामत होती, पर तेरा एक नजर का देखना मुझे तबाह कर गया, तेरा एक नजर का देखना मुझे तबाह कर गया। वो जैसे कहते हैं ना रूह रुखसत होती है, और बड़ा जुनून लुटाया है हमने तेरे पीछे, बड़ा जुनून लुटाया है हमने तेरे पीछे, काश तुम्हें भी हमसे मोहब्बत होती।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट जनाब, SBI वालों का पैगाम, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए तीन जराए देते हैं, या तो आप इनकी ब्रांच में जाएं वहां से रकम पहुंचाएं, या फिर इनकी मोबाइल ऐप के जरिए, या फिर इनकी मोबाइल ऐप के जरिए या ऑनलाइन, और मोबाइल ऐप के जरिए योनो SBI मोबाइल ऐप UK के जरिए आप इसे डाउनलोड कर लें। और आज के रेट दे रहे हैं ये इंडियन रुपीज ब्रिटिश पाउंड के बदले में 128.80 रुपए।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy to

जी हाँ जी, कुमार सानू आपके साथ करेंगे शरारत। और जो शरारत हमने सुबह की है आपके साथ कि जिसकी आज अभी तक मुझे सही जवाब मौसूल नहीं हुआ, मैंने बस इतना सा पूछा था कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जिसमें पढ़ना आसान है मगर निकलना मुश्किल है।

0: ये है लाइका रेडियो।
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
2: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th, आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
3: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
4: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
3: So where do we find something like that now?
4: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
5: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure. Ho jaye happy soul.
9: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
8: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
0: Up next, Ravina Khan with the magazine show, Leica Radio Greater Manchester. A Leica Radio classic plays now.
10: जी हाँ जी, हम तो चले, अब हमें तो साथी मिल गया। अगर आपको मिल गया तो बता देना।

0: The Magazine Show with Robina Khan. Like a radio.
1: Like a radio, Greater Manchester. The Magazine Show में आपने back to back दो songs सुने. अभी जो गीत सुना राहत फतेह अली खान की आवाज में साइया और हीरोइन फिल्म का नाम था 2012 की फिल्म थी और उससे पहले रांझना कविता सेफ एंड इसमें मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से गीत हमने आपको सुनवाया. सो बहुत से गीत होंगे, बहुत सी बातें होंगी और हमारे रेगुलर जो सेगमेंट्स हैं मंडे और ट्यूसडे के हवाले से शॉर्ट स्टोरी होती है, खबर पर नजर और बहुत सी बातें और बहुत सी इंफॉर्मेशन के साथ साथ लोड्स एंड लोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट म्यूजिक. सो रहिए हमारे साथ साथ. और अब लेके चलूंगी आपको एक और गीत की जानिब. आपको बता दें कि कुछ देर में जोहर की अजान का वक्त भी हो जाएगा, तो अजान सुनेंगे, प्रोग्राम इसी तरह आगे आगे बढ़ता चलता चला जाएगा. घड़ी भी टिक टिक कर रही है, हवाएं भी, सूरज भी, ऑल टुगेदर.
0: The Magazine Show with Robina Khan.

0: At the Gorga Priyada Pani.
1: All Monster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है। अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है। बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल हैं। NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें।
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
5: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favourite shows.
6: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए तारिक हलाल.com।

0: तारिक हलाल। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com।
1: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: आवाज बहुत ही खूबसूरत अरिजीत सिंह की, और गाने का नाम जानिसार है, जानिसार केदारनाथ फिल्म से, 2018 की फिल्म।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: करेंसी एक्सचेंज रेट आपको बता दें, आज वन पाउंड के एक्सचेंज में आपको यूएस डॉलर मिलेंगे 1.34, इंडियन रुपीज 129.52, पाकिस्तानी रुपीज 375.01, बांग्लादेशी टका 167.15, श्रीलंकन रुपीज 450.51, अफगानी 90.94 अफगानी।
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. You're listening to LIKA Radio Greater Manchester on 963 AM and 1377 AM. Previously known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. A Leica Radio Classic plays now.

मोहम्मद रफी की आवाज भी आप सुन रहे हैं मेरे महबूब। टाइटल ट्रैक है, फिल्म का नाम भी मेरे महबूब। 1963 की फिल्म से इस गीत को हमने लिया।

आराम आराम से पुंग पुंग कर चाय लोग पीते हैं लेकिन पुंग पुंग के रखना रे गिनी बेड्स सनी 2020 की फिल्म और इसमें आवाज

0: UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: अगर आप इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो आज आपको 1 पाउंड के एक्सचेंज में 129.52 इंडियन रुपीस मिलेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई यूनो मोबाइल ऐप. टीज एंड सीज अप्लाई.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan. Like a
2: radio. सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
3: UK singers, this is your moment. For the first time, ZTV's iconic singing reality show, Sare Gama Pa, is holding auditions in London. If you're 18 and over and can sing in Hindi, register now. Auditions take place Sunday the 26th of July at St. James Court at the Taj Hotel, London. Your voice could be the next big discovery.
4: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium, light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
9: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
0: News headlines up next. Like a Radio, Greater Manchester.
10: Hey, this is Riz Khan and I'm taking you home on drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Leica Radio Greater Manchester.

0: Sabina Khan. Like a radio.
1: So, जी दो बैक टू बैक सॉन्ग्स अभी आप सुन रहे थे जिंगत अजय अतुल की आवाज धड़क 2018 की फिल्म और उसके बाद अभी आपने दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा। अभी गीत सुना और इसमें मैं हूं ना फिल्म 2004 की फिल्म से सोनू निगम एंड साबरी ब्रदर्स की आवाजें थी। अप्लाई कर रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में रुबीना खान और आपको अभी जो मैं गीत सुनवाने जा रही हूँ वो आपको बड़ा पसंद आने वाला है। अब उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी सी फिल्म जिसको मे भी आपने देखा हो और अगर नहीं देखा तो इस ये रिकमेंड की जा सकती है। हक फिल्म जो है ये उससे गीत है। इसको कल ही मैंने देखा और आज ही मुझे अपनी लाइब्रेरी में ये मिल गया तो बड़ा मजा आया जी। तो अभी हम इसको सुनते हैं लेकिन यहाँ यानी कि हमारे सामने की स्क्रीन पर जहाँ पर आपके मैसेजेस जगमग कर रहे हैं। अन खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम वेरी गुड आफ्टरनून आपने लिखा है खान साहिबा और जमशेद चौधरी आपने लिखा है आपका भी मैसेज बहुत पहले से आया है और आपने लिखा अस्सलाम वालेकुम खुश आमदीद आर खान जी साहब के लाह के बड़े खूबसूरत। सो थैंक यू। नसीर अहमद भट्टी आपका भी शुक्रिया। आपका मैसेज पढ़ा मैंने और आपने क्या लिखा है जी आप ठीक ठाक के बाद खैरियत मौजूद तालिब खैरियत ये एक जुमला खतों में लिखने वाला हुआ करता था किसी जमाने में लेकिन अभी ये एक तरह से भूली बिसरी याद से बन गई है। मोहम्मद रफी की आवाज आप सुनना चाहते हैं हम तो सुनवाते ही रहते हैं। कौन सा हम मोहम्मद रफी को भूले बैठे हैं भूलने वाली चीज ही नहीं है। So, लेकिन अभी जो गीत है अरमान खान की आवाज में है और बहुत टेस्टी है क्योंकि टेस्टी ट्रैक है।
0: ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: सलमान मलिक की खूबसूरत गायकी और सॉन्ग स्लैश गजल आप सुन रहे थे। तू नहीं तो मैं नहीं, जिंदगी तेरे नाम है, कोई शर्त हो या दर्द हो, ये राबता कबूल है। ब्यूटीफुल ट्रैक हमारे सुनने वालों के लिए लाइका रेडियो से।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोका नूडल्स इन 3 मिनट्स। The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio. Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: From cuddles to intensive care, from school runs to sirens, for babies, young children and teens, illnesses like measles, meningitis and pneumonia can cause serious life-threatening complications and even be deadly. Making sure that your child is vaccinated is a safe and effective way to keep them happy and healthy. Keep them protected with the NHS vaccines offered to children. Search NHS GM Child Vax or contact your GP practice.
5: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
6: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
7: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले। ग्रैंड ओपनिंग ऑन July 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
8: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
9: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
8: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
1: 7 स्टेशंस, 1 पॉडकास्ट, 1 मोबाइल ऐप। Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 822 or sales at leicamedia.co.uk.

0: चलिए जी, क्लासिक सॉन्ग में हमने आपको मोहम्मद रफी की आवाज सुनवाई। दो बदन फिल्म का नाम था।
1: खबर पर नजर विथ रुबीना खान,
0: लाइक हर रेडियो। खबर पर नजर भी है और ये भी है कि ये एक प्रैक्टिकल सजेशन है एक्सपर्ट्स की जानिब से, मेडिकल एक्सपर्ट्स की जानिब से। हम सब जानते हैं कि रोजाना 10,000 स्टेप्स जो करना है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छा टारगेट समझा जाता है। लेकिन हर किसी के बस में नहीं है कि वो हर रोज बाहर जाके 10,000 जो स्टेप्स है वो करे। अब इस चीज को एक्सपर्ट्स जो है, मेडिकल एक्सपर्ट, वो कह रहे हैं कि आमतौर पर एक पर्सन एवरेज 10 मिनट्स में तकरीबन 1,000 कदम चलता है। सो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आपको तकरीबन 10,000 या 10,000 स्टेप्स के लिए तकरीबन 100 मिनट दरकार हैं कि आप इन वन गो, अगर बहुत लंबी वॉक करना चाहते हैं तो 100 मिनट आपको वॉक करनी होगी। लेकिन कुछ तरीके बताए गए हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल हैं कि आप इसको डिवाइड कर लें, यानी कि कभी 10 मिनट कर लें, फिर आप 20 मिनट कर लें, नाश्ते से पहले कर लें, दोपहर को कर लें, यानी कि इसको डिवाइड कर दें और अंदाजा लगा लें कि आपके जो 10,000 स्टेप्स हैं वो कितनी देर में होते हैं। फोन कर रहे हैं तो फोन बैठ कर ना करें, सोफा पर बैठ के ना करें या ऐसे ना करें, चलते फिरते करें। अब मुझे लगता है कि फोन पर तो बंदा 2 घंटे भी बाज लोग बात कर रहे होते और कहते हैं चलो अच्छा फिर कल बात करेंगे। तो ये सिचुएशन है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में। और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप कोई पॉडकास्ट सुनते हैं तो बेस्ट चीज है, बेस्ट पॉसिबल है, दिल भी लगा रहता है और आपको पता भी चलता है कि आप 2 घंटे भी, मतलब ये कि बड़ी बात है कि अगर आपको इंटरेस्ट का कोई टॉपिक हो तो आप चलते फिरते अपनी पसंद की पॉडकास्ट सुने, गाने सुने, कुछ भी सुने, लेकिन ये जो टारगेट है इसको हासिल कर सकते हैं। या आपकी अपने कन्वीनियंस पे है कि आप कैसे इस टारगेट को हासिल करते हैं।
1: The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: फिल्म का नाम है उमराव जानदा, ये पाकिस्तानी सॉन्ग है और मलका तरन्नुम नूर जहां की आवाज है। दिल में मन में उठी एक लहर।

0: सो जी उनकी सखियां मना कर रही हैं कि ना ना ना ना उड़ना नहीं, जमीन पर हो।
1: Mica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Mica Radio.
0: आज का गोल्ड रेट आपको बता दें 96 pounds 3 pence per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Like a radio.
3: Yeah.
2: Like a radio.
0: अच्छा आपको बता दें और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है और हेयर इज डेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर पेरेंट्स. गिव योर चाइल्ड द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट बाय मेकिंग श्योर दैट दे आर अप टू डेट विद देयर चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस. वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीरियस इलनेसेस लाइक मीजल्स एंड वूपिंग कॉफ विच कैन स्प्रेड इजिली इन अवर कम्युनिटीज. इफ योर चाइल्ड इजंट वैक्सीनेटेड दे आर नॉट प्रोटेक्टेड. चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस हेल्प प्रिवेंट मोर देन 5,000 deaths every year in England. It may help you know that all childhood vaccines offered by NHS have been safely given to millions of children around the world. It's important that vaccines are given on time for the best protection, but if your child has missed a vaccine, you can still contact your GP to catch up. Are your child's vaccines up to date? Check their red book or speak to their GP practice. For more information, visit nhs.uk/childhood vaccinations.
1: Like a radio.
0: और जी हाँ, लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, ये था एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए.
1: Formerly known as Asian Sound Radio. Mica Extra Podcast Update.
0: Like a extra podcast update आपको दे दें. टाइटल है Like a Presenter's Take Over. क्या ही मजे की पॉडकास्ट है जिसमें जो होस्ट किया है वो डोनी ब्रास्को ने किया है, जबकि इसमें प्रेजेंटर्स शामिल हैं वो हैं बाली अनिका, रूबी रजा, रेडियो वाली अनिसा नासिर. और इसमें बात की गई है कि एक प्रेजेंटर्स के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होता है, क्या सेक्रीफाइसेस हैं उसको जो देनी पड़ती हैं इस मीडियम में रहने के लिए, शोबिज़ की इंडस्ट्री में रहने के लिए. तो बहुत ही इंटरेस्टेड ये इंटरेस्टिंग जो चैट है या टॉक है, बल्कि कहना चाहिए मोर सीरियसली. और इसको सुनिएगा जरूर और आपको जरूर इसमें इंटरेस्ट लगेगा. लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
1: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर द मैगजीन.

0: ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਰੈਕ ਲੰਬੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ So, जी साउथ होल ट्रेवल को आप कॉन्टेक्ट कर सकती है अगर हॉलीडे प्लान कर रही है कॉल साउथ होल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कम्पेरेटिव दुबई डील्स ऑन 0208574 8410 एट प्रोटेक्टेड एंड साउथ होल ट्रेवल इज प्लीज टू अनाउंस दैट द एफ सी डी ओ हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. 90s throwback plays now.
2: Like a radio.

ब्यूटीफुल ट्रैक्स आप सुन रहे हैं जुनैद अहमद की आवाज, चांद मेरा दिल 2026 की फिल्म, क्या ही खूबसूरत गीत है। और इससे पहले अरिजीत सिंह एंड हर्षदीप कौर की आवाज में जालिमा।

0: Magazine Show with Robina Khan. Like a Radio.
1: जी हाँ, आपको खुश आमदीद कहती हूँ. मैं रुबीना खान आपके साथ द मैगजीन शो लेकर एक से लेकर चार बजे तक मेरा और आपका साथ रहता है मंडे टू थर्सडे. इस वक्त एक मैसेज आपको आप तक पहुंचा दूं कि बहुत जरूरी चीज जो है ना, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट होनी चाहिए. तो ये पैगाम NHS की जानिब से पेंडल कम्युनिटी रेडियो के तमाम सामईन के लिए है. बच्चों में लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बीमारियों से बेहतरीन तहफ़ फराहम करती हैं और इंग्लैंड में हर साल 5,000 से जायद जाने बचाने में मददगार साबित होती हैं. बचपन की मुतादी संगीन बीमारी, हस्पताल में दाखिले और बाज़ोकात जिंदगी भर की माजूरी का सबब बन सकती है. खसरा और काली खांसी जैसी बीमारियां हमारी कम्युनिटी में बहुत तेजी से फैलती हैं. अगर आपके बच्चे ने हिफाजती टीके नहीं लगवाए तो वो इन बीमारियों से यकीनी तौर पर महफूज नहीं है. NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली बचपन की तमाम वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को लगाई जा चुकी हैं और रिकॉर्ड से वाजे है कि इन वैक्सीन से बच्चे बहुत सी बीमारियों से बिल्कुल महफूज हो जाते हैं. बेहतरीन तहफ्फुज के लिए जरूरी है कि वैक्सीन मुकर्रा वक्त पर लगवाई जाए. अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो जल्द अज जल्द अपने GP से राब्ता करें ताकि वो वैक्सीन मुकम्मल की जा सके. क्या आपके बच्चे की तमाम हिफाजती वैक्सीन बर वक्त मुकम्मल हैं? ये जानने के लिए अपने बच्चे की रेड बुक चेक करें या अपने GP सर्जरी से राब्ता करें. मजीद मालूमात के लिए विजिट करें NHS.UK/childhood.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
3: Don't miss Mono's Markets, Europe's largest arena. Co-op live on Saturday, the 1st of August. 200 brands, 10 shopping zones, a mega main stage, industry experts, speakers, nasheed artists, and charity partner Human Appeal. Early bird tickets sold out in just 3 days. First release only £15 and almost gone. Leica listeners get 10% off tickets and stalls with code LEICA10. WhatsApp 07482-511-603. Visit monosmarkets.com/tickets now.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है. अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है. बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल है. NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें.
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
8: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी.
9: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए. लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, ईमेल sales@leicamedia.co.uk और कॉल नंबर 01612508222. That is 01612508222. Like a radio, Greater Manchester. Aapki community, aapka station.
10: Making summer feel better on the Like a Radio Network.

0: अलका याग्निकर को भाषाने की आवाज है। आप सुन रहे थे ये क्या हो रहा है क्वेश्चन। अच्छा है, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे और वो सब काम कर रहे होंगे। दिल तो धड़कता रहता है, उसका क्या है, ये उसकी जॉब है। और असल बात ही यही है, धड़कना ही चाहिए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और बिजनेस की बात भी करनी बहुत जरूरी है, ये करना भी बहुत जरूरी है। सो US डॉलर आपको मिलेंगे 1 पाउंड के एक्सचेंज में 1.34 इंडियन रुपीस, आप ले सकेंगे 129.52 पाकिस्तानी रुपीस, 375.01 बांग्लादेशी टका 167.15, श्रीलंकन रुपीस 450.51, अफगानी 90.94।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. A LIKA Radio classic plays now.

0: आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजें, एक मुसाफिर एक हसीना।
1: करूं क्या ये मैं?
0: बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी,
1: बहुत शुक्रिया।
2: The Magazine Show with Robina Khan. Short, heart-touching stories with Robina Khan. Like a radio.
0: आज की कहानी भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसीलिए मैं आपके लिए इस वक्त पेश करने जा रही हूँ। कहानी का उन्वान आप समझिए कि बादशाह है, बादशाह और तीन सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बादशाह और तीन सवाल। सो एक था बादशाह एक था बादशाह, और वो बादशाह अपनी मुल्क से कोई खुश नहीं था, उसका मुल्क में कोई सुकून अमन नहीं था, हर तरफ मसले ही मसले थे और काफ़ी प्रॉब्लम्स उस बादशाह को महसूस होती थी कि क्या करूं मैं, उसको समझ में नहीं आता था। और जाहिर है कि एक पूरी फौज होती है दरबार में जो बादशाह को मशवरे भी देते हैं, लेकिन किसी के मशवरे से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर बादशाह जैसा कि करते हैं हमेशा, इस बादशाह ने भी यही किया, और वो ये कि उसने ऐलान कर दिया कि जो कोई मेरे पास इस मसले का हल लेकर आएगा कि किस तरीके से मैं अपने मुल्क के हालात बेहतर कर सकूं, तो मैं उसको आधी सल्तनत, हाफ ऑफ द जो कंट्री है वो किंगडम, मैं उसको दे दूंगा। सही है जी। जो वजीर मशीर इतने इतने लोग होते हैं, उनमें से तो किसी का फैसला बादशाह को पसंद नहीं आया, तो एक गरीब बंदा आया। और यहाँ पर यह भी बड़ी अजीब बात है कि गरीब बंदा ज्यादा दानिश्वर होता है, शायद उसके पास टाइम सोचने के लिए बहुत ज्यादा होता है। सो उसने कहा जो वो बादशाह के दिल को बात लगी। तो बादशाह ने सवाल दोहराए कि सबसे अहम वक्त कौन सा है। तीन सवाल थे, नंबर वन सबसे अहम वक्त कौन सा है, सबसे अहम शख्स कौन है, और सबसे अहम काम क्या है। तो गरीब जो था आदमी, उसने कहा कि सबसे अहम वक्त वो है जो अभी है, जो गुजरा नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त का नहीं पता। तो सबसे अहम वक्त वो है, और ये हम सुनते हैं समझते हैं कि वक्त मौजूद जो है वही आपका असल वक्त है, जो गुजर गया वो गुजर गया, जो आने वाला है उस पर हमारा इख्तियार नहीं है। और सवाल नंबर दो ये था कि सबसे अहम शख्स कौन सा है, इम्पोर्टेंट शख्स कौन सा है। बहुत मसले हल हो सकते हैं अगर हम ये समझ जाएं। सबसे अहम शख्स वो है जो इस वक्त आपके सामने है, क्योंकि इससे अभी आपका वास्ता है। और सबसे अहम काम क्या है कि वो वक्त जो अभी है, वो शख्स जो अभी आपके साथ है, उसके साथ भलाई करें, क्योंकि हमारा काम यही है। इसी तरह करते करते जब आप वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, आप जिसके साथ हैं उसकी हेल्प करेंगे, और आप ये समझेंगे कि वो इम्पोर्टेंट शख्स है, तो मसला तो फिर कहीं रहने ही नहीं है। आप किसी महफिल में गए हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं भी हैं, ये तीन सवाल और इनका जवाब अगर हम सोच लें तो हम किसी के साथ बुरा नहीं कर पा सकते। तो लिहाजा मुल्क में अमन तो होना ही था, तो बादशाह फौरन उसको समझ आ गई। कहता है जी, ताली बजाते होते थे बादशाह जी उस वक्त और कोई चीज नहीं थी, थम्स अप नहीं होते किए जाते थे, कोई इमोजीज नहीं थी। तो उसने जो ताली बजाई और कहा कि तुम्हारा जवाब दुरुस्त है, तुम आधी सल्तनत किंगडम के वारिस हो। उसने कहा नहीं जी, शुक्रिया, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो असल में बात यह है, ताकत कुछ नहीं होती, असल चीज ये होती है कि आप किसी का दिल कैसे जीतते हैं, और वक्त का कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आपका अमल क्या है। इसमें अगर बरकत है तो आपकी जिंदगी बिल्कुल ठीक है, और आपको कोई बुरा कहेगा भी नहीं, क्योंकि आप किसी को नहीं कहेंगे, तो किसी को क्या पड़ी है जी, वो आके आपको ठोकेगा चलिए मैं आपको सैयनी मेरा माही सुनाती हूँ, नूरजहां, मैडम नूरजहां की आवाज में पाकिस्तानी सॉन्ग।
2: इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप। Listen live and listen back to your favorite shows.

0: मल कहते रहे नूरजहां की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे और आपके मैसेज है जी मोहम्मद अयूब आपने मैसेज किया है और आपने एक गीत की फरमाइश की है अनफॉर्चुनेटली आज मैं आपका गीत प्ले नहीं कर पाऊंगी लेकिन उम्मीद करती हूँ कोई ना कोई गीत आपको जरूर पसंद आया होगा। एस पी सजाद आपका बहुत शुक्रिया आपका मैसेज मिला है और कुछ लोग सिर्फ हेलो लिखते हैं उससे आगे नहीं बढ़ते सो हेलो को हेलो कह रही हूँ मैं। नसीर अहमद भट्टी आपका शुक्रिया और आपने कहा वाह आपको गीत अच्छा लगा मैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में जो था तारिक ब्लैकबर्न से आपने कहा कि आज तो मेरे साथ कहानी वाला वाकया हो गया है सो मैं आज क्रूज पे गया लेट हो गया वक्त है मौजूद की कदर करें लेकिन इट्स नेवर टू लेट आप प्रोग्राम में शामिल हुए और आपने मैसेज किए और कुछ गीत आपको अच्छे लगे जितना भी मुमकिन हो आपने हिस्सा लिया बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: 1 gram gold ka jo price hai 96 pounds 3 pence.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Leica Radio.
3: Ye hai
4: Leica Radio.
1: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Leica Radio.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02 0039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
8: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
7: So where do we find something like that now?
8: Right here in London. Baidyanath Sidhayu hair oil, shampoo and toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
9: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
10: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
11: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
10: Southall Travel.
11: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
10: Southall Travel can take you there.
12: Southall Travel. At all protected.
13: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
14: हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सरिता सबरवाल एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे
1: Artist of the week is brought to you by our new podcast Leica Extra stream it now and be a part of the conversation

0: Danny DeJohan, the better singer, is the artist of the week.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी बिल्कुल, अगर आप इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो वन पाउंड के एक्सचेंज में आपको आज 129.52 इंडियन रुपीस मिलेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Leica Radio.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
5: आफ्टर द स्मैश हिट रन इन 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting ditzy twist. Touring to St. George's Hall, Bradford, Wednesday the 5th of August to Saturday the 8th of August. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, Panto fun for all the family.
6: Radio partner Leica Radio.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
9: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
1: Bradford Mellor. 1st and 2nd of August. Exclusive radio partner. Leica Radio. Rizcan. Next with Drive.
10: Leica Radio.
1: Leica Radio, Greater Manchester. The Magazine Show with Robina Khan. Leica Radio.

0: ब्यूटीफुल पंजाबी ट्रैक अभी आप सुन रहे थे। वाह जी वाह, कहते हैं कि जिंदगी कटनी तेरे नाल, तेरी आदत बुरा हाल।
1: Like a radio.
0: आहो जी, ऐसे तो होता है। तो यहाँ पर प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है। रुबीना खान को आज के प्रोग्राम से इजाजत लेनी है अभी, और आपका शुक्रिया अदा करना है अभी के सभी लोग जहाँ कहीं भी आपने सुना हमें, देर मेहरबानी। आपसे मुलाकात होती है कल दोपहर एक बार फिर से 1 से लेकर 4 बजे तक। उस वक्त तक के लिए इजाजत, बाय फॉर नाउ। इंतजार कीजिए रिस खान का। चलती हूँ, बाय फॉर नाउ।

0: at the Golgapianda Pani.
1: All Monster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
3: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.
2: ड्राइव विद रेस.

0: For babies, young children, and teens, illnesses like measles, meningitis, and pneumonia can cause serious life-threatening complications and even be deadly. Making sure that your child is vaccinated is a safe and effective way to keep them happy and healthy. Keep them protected with the NHS vaccines offered to children. Search NHS GM Child Vax or contact your GP practice.
1: Looking to get back into study? Choose Global Banking School. We deliver undergraduate and postgraduate courses in accounting, business, construction, computing, project management, healthcare, tourism, and psychology with counseling. Our flexible courses are taught face-to-face at a time to suit you on weekdays and evenings. Courses are delivered across 10 campuses in London, Birmingham, Manchester, and Leeds. Contact Global Banking School on 02080929440 or visit globalbanking.ac.uk to start your learning journey today.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410 दैट्स 85748410 साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
3: सुबह का नाश्ता हो दोपहर का लंच या शाम का डिनर सब कुछ एक ही जगह बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी पाए निहारी मगज पराठे और बिरयानी साथ ही लजीज डिजर्ट्स फालूदा शेक्स कड़क चाय कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th आज ही तशरीफ लाइए 881 स्टॉकपोर्ट रोड मैनचेस्टर M19 3PG तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट हर वक्त हर जायके के लिए
4: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
5: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
4: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
6: नेक्स्ट अश्विनी इन फॉर अनीस एंड नासिर ऑन द इवनिंग शो ऑन लाइका रेडियो Drive Time with Riz Khan, sponsored by Pepe's Piri Piri.

0: जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। 21st of July ट्यूजडे, जिसे हम कहते हैं हमारे यहाँ पे टेरिफिक ट्यूजडे, एंड टेरिफिक ट्यूजडे मनाने के लिए हाजिर हो गए हैं आप सब। तो अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुके हैं, सारे के सारे हमारे धुरंधर आ गए हैं, अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। लेट कमर से तो पक्का फाइन लेना शुरू करना ही पड़ेगा। And some of our listeners are so cute, I must say. They're like, अरे यार हम तो कब से सुन रहे थे, बस मैसेज करना भूल गए तुम्हें। आय हाय क्या बात है, क्या बात है। आप इंजॉय कर रहे हो ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में आसपास कोई वो हमारा जो स्मार्टफोन होता है वो भी रखा होता है, उसमें होता है व्हाट्सएप। तो मेरे जो प्यारे प्यारे साइलेंट लिसनर्स है, हाँ जी आप भी फोन उठा के हमें मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के लिए बड़ी सी स्क्रीन हमारे यहाँ पे लगा के रखी है, जहाँ पे आपके मैसेजेस आते हैं और हमारी गुफ्तगू आपके साथ में चलती रहती है। पूछे आप सबसे कैसे हैं आप सब, ट्यूसडे की शाम, नया दिन, कुछ नए से आप, कुछ नए से हम, लेकिन अब हो चुकी है शाम। तो इस नई शाम के लिए पूछना तो बनता है, कैसा रहा आपका दिन, सब ठीक ठाक बढ़िया, कुछ भी मन में कहने लायक बात है, कुछ सता रही है चीज अंदर, दुख दर्द पीड़ा, नॉट लंबे लंबे ऐसे, लेकिन शॉर्ट में लिख के भेजिए। इफ आई कैन हेल्प आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। लाइफ थियरी लेके आई है अश्विनी, अरे बिल्कुल सुनाऊंगी लाइफ थियरी, और उसके साथ में एक रैंडम सा सवाल है ना, बहुत दिन से मैंने रैंडम सवाल ही नहीं पूछा आप लोगों को। अच्छा, आप लोगों में से कई लोग जवाब देते हैं और कई लोग ना एकदम शांत बैठ के वो जवाब सुनते रहते हैं, लेकिन नहीं, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा इस सवाल का जवाब। मेरा सवाल क्या है, सवाल आप सबसे ये है कि रोजमर्रा की लाइफ में या ओवरऑल कुछ कुछ चीजें करना हमें पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है, जो अपनी एशियन लैंग्वेज में कहते हैं अरे यार बड़ी ये चीज ना मेरी बड़ी जान पे आती है, जान पे आती है मतलब मुझे वो चीज नहीं करनी है, मुझे वो चीज करनी पसंद नहीं है। फॉर मी जब भी कोई नई चीज घर में आती है उसके साथ में आता है मैनुअल, तो वो मैनुअल पढ़ना मुझे बड़ा बोर होता है, मेरी जान पे आता है मैनुअल पढ़ना। साथ में लीफी वेजिटेबल्स का जो होता है ना, मतलब जैसे मेथी आ गई और ये सब चीजें, ऑब्वियसली भी क्लीन कोरिएंडर एंड मेथी, ये भी मुझे जान पे आता है बट मैं कर लेती हूँ एट टाइम्स, एंड बीन्स को कट करना। तो मेरी तरफ से ये तीन चीजें हैं, मैनुअल, बीन्स एंड लीफी वेजिटेबल्स, ये तीनों चीज मेरी जान पे आते हैं। आपको कौन सी ऐसी चीज है जो यार करना पड़ेगा काम वो, लेकिन नहीं अगर किया तो भी चलता है, ऐसे वाला लिख के भेजिए जरूर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपए और 50 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply.

0: से निराला।
1: Mapster Pani Puri or Pani Puri ka Pani.
2: All Mapster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
3: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
5: Punjab, the biggest tunes, non-stop.

0: Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 8:31 PM. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। तो आप लोगों को कौन सी चीजें करना पसंद नहीं है, इसकी भारी भरकम लिस्ट मेरे पास आ रही है। दे दनादन सारे के सारे लोग एज इफ लुके दे कि हमसे कोई पूछे कि कौन सी चीजें हैं, कौन सी ऐसे हाउस होल्ड चोर्स हैं जो आपको करना बड़ा बोर होता है, आपकी इच्छा ही नहीं होती है एंड यू डोंट लाइक टू डू इट। सो आ गई है वो पूरी की पूरी लिस्ट मेरे यहाँ पे आ गई है और भी चीजें आ रही है। ओके, तो अब जरा हम चलते हैं लाइफ थियरी की तरफ। आज मैं कौन सी लाइफ थियरी सुनाने वाली हूँ, द कैंप फायर थियरी। कैंप फायर के बारे में हम सभी जानते हैं कि कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके लोग बैठ जाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। तो ये जो लकड़ियों का एक जो ये एक सर्कल में लकड़ियां लगाई जाती हैं और उसमें से जो वार्मथ मिलती है उसके आसपास लोग बैठते हैं। जनरली कैंप फायर कैंप्स में जब जाते हैं तब तो करते ही हैं, ठंड के दिनों में भी करते हैं। उसका उद्देश्य यही होता है कि भाई जो वार्मथ मिलती है ठंड में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एक अच्छी फीलिंग भी होती है और साथ में अपने आप को लोग उस ठंड से प्रोटेक्ट भी करते हैं। जब तक उस कैंप फायर में से वार्मथ मिलते रहती है लोग बैठते हैं और जैसे जैसे ये वार्मथ खत्म होने लगती है, मतलब उन लकड़ियों में लगी आग जब बुझने लगती है, तो लोग उस जगह से उठ के चले जाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पे बैठते हैं और कुछ देर बैठते हैं। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कौन दो लकड़ियां इकट्ठा करके लाए, कौन इसमें फिर से आग लगा के जला के यहाँ पे बैठा रहे, तो लोग निकल जाते हैं। और कुछ लोग जिन्हें वहां रुकना होता है वो जाते हैं, लकड़ियां इकट्ठा करके लाते हैं और फिर पहले की जो लकड़ियां जल चुकी हैं उनमें से जितनी भी अग्नि या आग आ रही है उसमें ये नई लकड़ियां डाल के वहां पे रुक जाते हैं। अब हमारी जिंदगी से ऐसा क्या लेना देना, हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। ह्यूमन लाइफ में दूसरे ह्यूमंस उस एक इंसान के साथ में रहना रुकना पसंद करते हैं जब तक उनका खुद का फायदा उसमें से होता है, जब तक उनका मुनाफा होते रहता है। रिश्तों में लोग मुनाफे की वजह से बहुत ज्यादा देर तक रुक जाते हैं। और जैसे जैसे सामने वाले इंसान की कैपेसिटी कम होने लगती है कि वो लोगों को पैसे देना, इमोशनल सपोर्ट देना या किसी भी वे में अवेलेबल होना, जब किसी इंसान की कैपेसिटी कम होने लगती है तो उसके आसपास के वो लोग, लेट इट बी देयर इमीडिएट फैमिली, उनके सिबलिंग्स, उनके एक्सटेंडेड फ्रेंड्स जो भी हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज जो भी हैं, वो धीरे धीरे उनसे दूर होना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका मतलब तब तक निकल चुका होता है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही उस पर्टिकुलर इंसान के साथ एंड तक रुकते हैं क्योंकि वो तहे दिल से उस इंसान को प्यार करते हैं और उसका साथ छोड़ना नहीं चाहते। वो उस इंसान की हिम्मत बंधाते हैं जो अपनी हिम्मत भूल चुका है या टूट चुका है। क्या आप की लाइफ में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो इस कैंप फायर थ्योरी की तरह हमेशा आपके साथ में खड़े रहते हैं, आपके सपोर्ट में? हाँ, मुझे मत बताइए, ध्यान से सोचिए। द कैंप फायर थियोरी, लाइफ है आपकी, लोग हैं आपके, कैसी लगी है थियोरी जरूर बताइएगा।
1: ये है
3: Laika Radio, द इवनिंग शो विद अश्विनी।
4: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM to 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 47 मिनट्स पास्ट 7. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी. यादों की बारात में आपको सुनाया 1957 में रिलीज्ड फिल्म पेइंग गेस्ट से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में. छोड़ दो आज, व्हाट अ लवली ट्रैक दैट वाज. और उसके बाद में आहा, क्या बात है, मोहम्मद रफी की आवाज में संगम फिल्म से सुनाया ये गीत 1964 में. तो 60s वाले बच्चे जो है, नॉट 60 ईयर ओल्ड, 60s में जो बच्चे बड़े हो रहे थे, आई एम श्योर वो सभी बेहद खुश हो गए होंगे. या इतने ब्यूटीफुल गाने, इतने अमेजिंग लिरिक्स, इतनी अच्छी कंपोजिशन, मतलब दिल जो है ना बाग बाग होता है. एंड आई एम श्योर आप में से कई लोग अपनी बाग में, अपने गार्डन में घूमते घूमते है ना, पेड़ पौधों से गपशप करते हुए या अपने पेड़ पौधों को हमारा ये शो सुनाते हुए एंजॉय कर रहे होंगे. तो मैंने आप सबसे पूछा कि ऐसे कौन से हाउस होल्ड चोर्स हैं जो आपको लाइक यार ये, या ऐसी कौन सी बातें जो आपको लगता है कि नहीं नहीं आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू डू इट, आई डोंट लाइक डूइंग दिस. ओके, सो आयनिंग करना, कपड़ों को आयन करना, ओके, ये वाला टॉप पे आया है क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने यही लिख कर भेजा है कि यार कपड़ों को आयन करना ना अश्विनी बहुत ज्यादा बोर होता है, पता नहीं क्या ही इसका प्रॉब्लम है. अच्छा, आप लोगों को पता है कि देयर इज एन आयनिंग मशीन विच इज गोना बी कम आउट. आई एम थिंकिंग कि होगी, शायद कई देशों में आ गई होगी. एक्चुअली मैंने कुछ 3-4 साल पहले उसमें अपना नंबर भी लगा के रख दिया, जैसे रोटीमैटिक का हुआ था ना कि रोटीमैटिक आ रही है, तो वैसे ही ये कपड़ों को आयन करने के लिए बस अपने शर्ट या जो भी कपड़ा है उसे हैंगर पे लगा के एक ऐसा बॉक्स जैसा है जिसमें ये लटका दीजिए और कुछ देर में आपका ये कपड़ा आयन होके आता है बाहर. हाँ हाँ, किसी के पास है ये मशीन तो हमें बताइए.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 128.83 Indian rupee, 371.84 Pakistani rupee, 450.01 Sri Lankan rupee, 165 Bangladeshi taka, 89.44 Afghani, 172.98 Kenyan shilling, 1.33 US dollars and 63.21 Mauritian rupee.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Radio.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £98.17 per gram.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
0: चलिए 21st of July ट्यूजडे, आज हम मनाते हैं टेरिफिक ट्यूजडे ऑन दिस इवनिंग शो. तो आज का पहले आवर का आखिरी गीत कौन सा होगा? सत्य भी सत्ता फिल्म से जिंदगी मिलके बिताएंगे. तो ये वाला गीत ना मेरी तरफ से आप सबके लिए अराउंड द ग्लोब, आप जहां पे भी इस शो को अभी सुन रहे हैं, द इवनिंग शो विद अश्विनी में आप और हम मिलके आज ये प्लेज लेते हैं, आज एक कसम लेते हैं कि जिंदगी मिलके बिताएंगे और साथ में ये शो के साथ में गानों के साथ में इंजॉय करते जाएंगे. द कैंप फायर थियरी बहुत ज्यादा पसंद आई है आप सबको और सभी लोग अपने अपने अनुभव मुझे लिख के भेज रहे हैं. देखिए ह्यूमन लाइफ है ना, होना ही है, ऐसी चीजें जिंदगी में आना ही है कि कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, कुछ लोग निकल जाएंगे. एंड इट्स ओके जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, उन्हें फ्री छोड़ दीजिए. अगर वो वापिस आ गए, मतलब उन्हें किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, आप उनको फिर से छोड़ दीजिए. जी जी जी, टिक टिक करते हुए घड़ी कह रही है कि अश्विनी आप जरा फटाफट एक छोटा सा ब्रेक एंड उसके बाद में आखिरी एक गीत एंजॉय करते चलिए.
1: अश्विनी ब्राइटनिंग अप योर वीक नाइट्स,
3: द इवनिंग शो विद अश्विनी
2: हेरल्ड.
1: world. New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
4: यू मीन सॉफ्टॉल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
4: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टॉल ट्रेवल.
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
5: कॉल सॉफ्टॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
8: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
1: This is the Leica Radio Network. Download the Leica Radio mobile app on your mobile devices. The radio network consists of Leica Radio Greater London, Leica Radio Greater Manchester, and Leica Gold Radio.
9: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
10: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
1: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
11: The Evening Show with Ashwini.
1: Leica Radio. Where Bollywood comes first.

0: आप भी आ जाइए बिल्कुल सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी में. और इस आवर का आगाज हमने किया था, पहला गीत था प्यार किया तो डरना क्या, उदित नारायण अलका याग्निक तनिष्क बागची की आवाज में दीवाना मैं चला, एंड ये फिल्माया गया था सलमान खान पे. देखो मैंने देखा एक सपना, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में लव स्टोरी से लिया ये गीत. बिल्कुल अमित कुमार जी ने कम ही गीत गाए लेकिन जितने गाए मोस्ट ऑफ देम वर सुपर डुपर हिट. एंड इस आवर में हम क्या बातें करने वाले हैं भाई, बिल्कुल जो बातें हम सबके दिल के बड़ी करीब होती है और कुछ अच्छा सुनना, तो गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड जिसके बारे में पता नहीं दुनिया बात कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन हम यहाँ पे जरूर बातें कर रहे हैं. क्या बात है यार, आयनिंग कितना परेशान कर रहे हैं. अभी भी कितने लोग मुझे कह रहे हैं कि अश्विनी आयनिंग करना बहुत बहुत बहुत मुश्किल लगता है यार, बहुत बोरिंग होता है ये काम, है ना. एक्चुअली जो आयन फ्री क्लोथ होते हैं ना वो आई थिंक दे आर द बेस्ट काइंड ऑफ क्लोथ ना, कि जब आयन ना करो उनको, वॉशिंग मशीन में से निकाल के भी इंसान पहन ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरियसली, है ना. कुछ कुछ टेक्सचर्स जो होते हैं कपड़ों के वो बड़े ही लुभावने होते हैं उन लोगों के लिए जिनको आयनिंग करना पसंद नहीं है. एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128 इंडियन रुपए एंड 50 पैसे. एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में सुनाया आप सबको ये गीत मेला फिल्म से, विच वॉज रिलीज इन 1971. आई हैव टू से दिस गीत इज वेरी स्पेशल एंड डियर टू मी बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर मेरी आई, मेरी मम्मी, उन्हें लता मंगेशकर बेहद बेहद पसंद थी, तो वो ना उनकी कैसेट्स रिकॉर्ड करके मंगवाती थी हम लोगों से. वी यूज टू गो टू द कैसेट शॉप एंड वी यूज टू गेट दिस, एंड द मोमेंट दिस गाना केम इन फ्रंट ऑफ मी मैंने प्ले लिस्ट में जरूर प्ले करते हैं. बहुत बहुत सुंदर गीत है. कैसे ना देखो कैसे गीतों के साथ में हमारे किस्से कहानियां जुड़े हैं, और आप लोगों में से कितने हमारे लिसनर्स हैं कि हर एक गाने के साथ किसी ना किसी की कोई ना कोई मेमोरी जुड़ी होती है, इसीलिए वो हमें मैसेज करके बताते हैं. चलिए थोड़ा मुस्कुराते हैं क्योंकि अब बात करेंगे कुछ ऐसी गुड न्यूज के बारे में जिसे आप और हम यहाँ सुनते हैं ऑन द इवनिंग शो विद अश्विनी. सो यूके स्टार्टअप इज मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैक्टीरिया इन द सॉइल. क्या बात है, दिस इज समथिंग न्यू. यूनिक डबल कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी लेट्स ट्विन्स हियर मॉम्स वॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम टूगेदर. सोचिए छोटे छोटे बच्चे जब मम्मी की आवाज पहली बार सुनेंगे, ओ माई गॉड कितनी खुशी की वो मोमेंट होगी. Hospital opens roof garden where critical care patients can enjoy the outdoors for hours with full care. This was much needed, I believe. Woman wins lottery and immediately gives neighbors 5,000 to take the family on vacation. Seriously? Aise log hote hain yaar? Kya baat hai? Record low child mortality rates recorded in both India and China. Dad gave up his old Mustang to raise 6 kids. Decades later, his son got it back. Actually, ऐसे होता है कि बच्चे अपने parents के लिए, उनके parents ने जो भी उनके लिए sacrifice किए होंगे जब ये बच्चे छोटे होते हैं, तो बड़े होने के बाद definitely they make a point कि parents के लिए वो सारी चीजें provide करें जो शायद उन्होंने अपनी young age में sacrifice की थी अपनी family के लिए. I'm sure आप, मैं, हम सभी के पास ऐसी कुछ न कुछ किस्से कहानियां हैं ना हमारे parents को लेके जहां पे उन्होंने sacrifice किया होगा जब वो भी एंजॉय कर सकते थे चीजों, लेकिन दे सेड नो इट्स फॉर किड्स. ओके, नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रहे हैं दैट इज मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में. थोड़ा सा इनकी अभी मन की बातें सुनो ना, ये क्या कह रहे हैं, ना ना करते मतलब क्यों तो ना करी और क्यों तो हाँ करी.
1: Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to LeicaRadio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@LeicaRadio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@LeicaMedia.co.uk. UK.
2: The Evening Show with Ashwini.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
3: डेजर्ट सफारी,
4: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
5: साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.
6: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है. अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है. बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल है. NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें.
7: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favorites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester. Broadcasting on 1377 AM and 963 AM. You can also catch us on DAB Digital Radio across Greater Manchester and East Lancashire. We're also available on Alexa. Simply tell Alexa to play Leica Radio Manchester. Or download the Leica Radio mobile app and listen to the entire Leica Radio network wherever you are in the world. This is Leica Radio. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London and Leica Gold Greater London? As a combined network, we can give you a competitive rate. Spread your message to a wider audience. Call 0161 250 822. That's 0161 250 822. Or email sales@leicamedia.co.uk.
2: Punjab, the biggest tunes.

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: Yeah.
1: Laika Radio.
3: ये इमोशन ऑफ द डे में आपको सुना रही हूँ बहुत ही स्पेशल गीत एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आने वाला है पाकीज़ा फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में चलते चलते एंड दिस इज टेरिफिक ट्यूसडे
2: द इवनिंग शो विद अश्विनी इमोशन ऑफ द डे

0: emotion of the day.
1: That engine ki city. Yes, that city, Maro Mandole. Beautiful track, है ना? And studio में मैंने इतना volume बढ़ा के रखा था यहाँ पे, एक एक instrument की आवाज, especially with तबले पे जिस तरह से check check एक एक जब beat आ रही थी ना, loved it. किशोर कुमार फैंस तैयार हो जाइए, अनुरोध फिल्म से आते जाते खूबसूरत थोड़ा मस्ती भरा गीत हो जाए अभी.
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: Biker Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 128.86 Indian rupee, 371.84 Pakistani rupee, 450.1 Sri Lankan rupee, 165.04 Bangladeshi taka, 89.31 Afghan Afghani, 173.01 Kenyan shilling, 1.33 US dollars and 63.23 Mauritian rupee.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LYCA. This is LIKA. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
1: Gold is currently trading at £98.20 per gram.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: LIKA Radio. मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 8:50. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. सो अब नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुनाने वाली हूँ, दैट इज बेता फिल्म से बादल यूं गरजता है. क्योंकि गरजे ही नहीं ना बादल इतने में, मिस कर रहे हैं हम लोग बादल को गरजना, बादल का गरजना एंड बारिश का आना. लता मंगेशकर एंड शब्बीर कुमार की आवाज में. दिस फिल्म वॉज रिलीज इन 1983. बेता फिल्म से आखिरी गीत ऑफ सेकेंड आवर. नेक्स्ट आवर में गजल या कवाली मैं क्या सुनाने वाली.
0: Seven stations, one podcast, one mobile app. This is the LIKA Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: Welcome. This is the last and the third hour of the evening show with Ashwini. इस आवर का आगाज हमने किया था कयामत से कयामत तक, which was released in 1988 इस फिल्म से. उदित नारायण एंड अलका याग्निक की आवाज में गजब का है दिन. अब तो शाम रात हो गई भाई, लेकिन दिन तो अच्छा रहा ना, उसके बारे में था एक गीत. एंड इसके बाद में व्हाट अ मेलोडियस ट्रैक दिस वन इज, प्यार हमारा अमर रहेगा फ्रॉम मुद्दत फिल्म, विच वॉज रिलीज इन 1986. ठहरा वाला गीत, प्यारा गीत, दिल को छू जाने वाला गीत. मोहम्मद अजीज की आवाज डेफिनेटली, आशा भोसले के साथ में क्या कॉम्बिनेशन था, लव्ड इट. ओके जी, तो आज 21st of July बर्थडेज एनिवर्सरी स्पेशल डे, तो किसी और चीज के लिए भी आज का दिन स्पेशल डे है. एंड दैट इज, आज क्या और स्पेशल मनाया जाता है, तो हर एक चीज के लिए एक स्पेशल डे डेडिकेट कर दिया जाता है. आज मनाया जाता है नेशनल जंक फूड डे, नेशनल लेमिंगटन डे, लीगल ड्रिंकिंग एज डे, टेक अ मंकी टू लंच डे. सीरियसली, दिस इज समथिंग यूनिक. नेशनल बी समवन डे, रॉयल वेल्श शो, इन्वाइट एन एलियन टू लिव विद यू डे. ये सच में मतलब किसने बनाया, मुझे तो अभी सवाल आ रहा है इस चीज पे. वर्ल्ड क्वाली डे, फेस्टिवल ऑफ ब्रिटिश आर्कियोलॉजी. तो सारे इंटरेस्टिंग डे आज मनाए जा रहे हैं, उसमें से नेशनल जंक फूड डे. जंक फूड के बारे में अब क्या ही हम बात करें. हाँ, इतना जंक फूड हम लोग खा जाते हैं, स्पेशली हमारे यहाँ पे ना, मुझे लगता है एशियन कंट्रीज में ना, वी ऑल आर. देखो, दो चीजें हैं हम एशियन लोगों के साथ में शायद. एक तो फूड हमारी जान, आन, बान, शान है, और दूसरे होता है रिश्ते. ये दो चीजें हमारे लाइफ में ना बहुत ही क्रूशल है. चाहे खाने पीने, मतलब देखो कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, मूड अच्छा है बाहर खाना खाने चले गए, मूड खराब है बाहर खाना खाने चले गए, कुछ काम है टाइम नहीं मिला बाहर खाना खाने चले गए, आज कुछ बनाने का मन नहीं है खाना खाने बाहर चले गए. एवरीथिंग इज अराउंड द फूड, है ना. तो ये जो जंक फूड है, जंक फूड तो मतलब आप रील्स देखिए, और स्पेशली वो जो फूड इन्फ्लुएंसेस की रील्स होती है, एक बार आपने वो रील देख ली तो आपके एल्गोरिथम में दे दनादन जंक फूड की जो रील्स पे रील्स आएगी. एंड देन यू विल बी लाइक कि यार अब तो सच में जाके कुछ ना कुछ बना के खाना पड़ेगा या बाहर से मंगवाना पड़ेगा. सो समटाइम्स वी जस्ट क्रेव समथिंग डिलीशियसली नॉटी, लाइक द क्रिस्प सेवरी. लेकिन भाई ये तो यहाँ की हुई ना, हमारे वहां पे तो चलो, वहां पे तो चाट भंडार जो होती है, कचौड़ी, समोसे, पकोड़े, नाम लीजिए और सारी डिशेस हाजिर. मतलब नॉर्थ ऑफ इंडिया से साउथ ऑफ इंडिया तक, ईस्ट ऑफ इंडिया से लेके वेस्ट ऑफ इंडिया तक, सेंट्रल, हर जगह खाना खाना और बस खाना.
1: Ashwini, brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 रुपए एंड 50 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक में आपने सुना ये गीत जो फिल्माया गया था हेमा मालिनी पे, मन्ना डे एंड आशा भोसले की आवाज में सीता और गीता से लिया था ये गीत आपके लिए। 1972 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा, पुरानी पिक्चर्स की अगर बात करें, फिल्मों की बात करें 70s और 80s की, तो लाला नाम जब भी आएगा ना, तो कोई एक सेठ जी विद बड़ी मूछे, या मूछे ना भी हो लेकिन बड़ा पेट, मतलब बड़ा पेट मतलब लाला, ये वाली ये चीजें इतने प्रोमिनेंटली याद आती ना। अभी जैसे इस गाने में वो शब्द आया लाला, लाला समझे गया, तो मेरे आंखों के सामने वो लाला आ गए, वो व्हाइट कुर्ता एंड विद धोती, एंड बस उनकी पूरी इमेज हमारे सामने आ गई। ओके, तो गजल या कवाली में क्या सुनाने वाली, मैं आपको सुनाने वाली हूँ गजल निकाह फिल्म से गुलाम अली की आवाज में, चुपके चुपके रात पे।
1: Good track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
2: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
2: Leica Radio.
3: Ghazal.

0: मिला रही है घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स नियरली बता दूं अभी कुछ सेकंड्स और बाकी हैं, पर चलो कर लेते हैं. इट्स 44 मिनट्स पास 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंडन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, एंड दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. बस टाइम फॉर मी टू से टाटा बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि अब घड़ी कह रही है बस चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे जा सकते हो, अभी आपका टाइम हो गया है घर पे जाने का. तो बस यही कहेंगे, गोल्ड नाइट्स ओवरनाइट सर्विस है, जरूर सुनेगा लाइका गोल्ड, लाइका गोल्ड टू लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो 90s. सुबह सवेरे आएगी हमारी अपनी काजल, तो उसका साथ दीजिएगा. एंड प्यार के बारे में जो मैं रोज कहती हूँ वही कहूंगी कि प्यार दो, प्यार लो, प्यार बहुत ही प्यारी चीज है. एंड पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, हम में से कोई भी उसका यूज नहीं करता. लाइफ सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, अपने आप का खूब ख्याल रखिए. मौसम सुहाना होते जा रहा है, गर्मी कहीं तो गायब हो रही है, एंड वी ऑल आर रियली हैप्पी. सो कल हम मनाएंगे मिड वीक, माई फेवरेट डे, दैट इज वेंसडे. ऑन दैट नोट आई हैव टू से लव यू ऑल, टेक केयर, बाय.
1: ये है लाइका रेडियो. This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
2: The Evening Show with

0: है लाइका रेडियो।
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
2: यू मीन सफल ट्रेवल?
1: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
2: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल।
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
2: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
3: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250।
4: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह। बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी। साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन July 11th। आज ही तशरीफ लाइए, 881 Stockport Road, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
5: This is an urgent appeal from the Disasters Emergency Committee. Two devastating earthquakes have hit Venezuela, resulting in widespread destruction. Thousands have been killed and injured, and survivors desperately need food, water, shelter, and medical care. Go to dec.org.uk to donate, or text radio to 70150 to give £10. Texts cost your donation plus standard network rate. See website for T's and C's. Thank you.
6: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
7: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Greater Manchester, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Leicester. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222. Or email sales at leicamedia.co.uk. The sounds of love in Manchester. The love sound. Leica Radio.

0: Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा ले. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई दी 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
3: देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
2: डेजर्ट सफारी,
3: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम.
2: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे.
3: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
4: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
0: Get in touch. Advertise on Leica Radio, Greater Manchester, the largest Asian commercial radio station in the northwest of England. Call now 0161 250 8222 or sales at leicaradio.com. Did you hear that? It's space on the radio for your business to advertise. Call us now on 0161 250 8222 and be a part of the largest commercial radio station in the northwest of England. Or email sales at leicaradio.com.
5: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.